कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद

गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा गुरमुख करे सो सुभाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन कौ रंग रत गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया, जिस कौ तू प्रभ

चाहो, भूख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे वे परवाहो। माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम त्याय सुन सबनानो कर दान। जन्म

मैं मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

पहला, ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नै जलो, अन्न पौन फिर ना कोई, एक तुई महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कुई, एक तुई महला पहला। प्रंदे ना ग्राह जर, द्रख्त आब आस कर, देहांद सुई एक तुई महला पहला। नानक लिलार।

आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझे। कह कह कथना माया लूझे, हुक्मी सगल करे आकार। आपे जाने सर्व विचार, अखर नानक अखियो आप। लह प्रांत होवे जिस दात पौड़ी।

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वशल

इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप तरह सगले कुल उधारा, इस काल युग में कर्म

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवे जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन

बिन सजाए कूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्त।

सतगुरा जब गुरु बोलहे तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख जैसे हम सतगुर राख लिए छाए। तू गुर पिता तू है गुर माता।

हर नाम मन चित नित ध्याव हो जन नानक जो अंति अवसर लै छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए।

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया धारी, तिन जम जोहन लागे।

पुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

इस ग्रह में कोई जागत रह साबत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन हार।

मनह कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत कत है ना डोले जाके हर तन सो सच शाह गुर पूरे कर दीनो विसाह।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे। मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे।

हों मैं निवरह गुर शब्द विचारे, चंचल मत त्यागे पंच संहारे। अंतर साच सहज कर आवहे, राजन जान परम गत पावहे। सच करनी गुर परम चुकावे, निर्भौ कै कर ताड़ी लावे। हों हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावे।

सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं ब्रह्मणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिन कै मन वस्या सच सोई तिन की संगत गुरमुख होई।

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जिया मह एको रवै।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द।

रोता, आवत कौ जाता कहे जाते कौ आया, पर की कौ अपनी कहे अपनो नहीं पाया।

सो अपर अपारा सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया गुर कृपा ते बूझिए सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबह न जाए जिचर शब्द ना पीजै हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जम्मै वारो वार।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

आए जम डंड सह है सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई हों मैं मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई।

तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करण हार पछाता तब इसनो नाही किशताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा। जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया। जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी। जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुरु मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो। जीत

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहर।

छाया दिन सबेताला गिर तार धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पश पंखी अनक जोन जिंदू सगल पसार दिसै पासारा विनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

जो इस मारे तिस कौ पौ नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सो ई जति, जो इस मारे तिस हो वै गति।

जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सो ही सो ज्ञानी, जो इस मारे सो सहज ध्यानी।

आत्म घाती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया।

धारिया गुर निव निव लागौ पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक एक बलहारिया सब गुण किस ही ना है हर पूर पंडारिया चहु दिस जपिय नाउ सुख सवारिया मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलहारिया गुर काढ़े।

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको।

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

सत पाव हो गोविंद भज हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यो या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

दुख सुख वाकै समत बिचारा, नरक सुरग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूर्ण घट घट पुरख बिसे।

प्रभु कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभु कै सिमरन हुए सो पहला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला।

से धनवंते प्रभ कौ सिमरह से पतवंते प्रभ कौ सिमरह से जन परवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्ब के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ

अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत ना पहाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जह महा भयान दूत जम दले तह केवल नाम संग तेरे चले जह मुश्किल होवे अत पहारी हर को नाम खिनमाहे उदाहरी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत आघावै जिह मार्ग इहो जात इकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है।

जम का बहु व्यापय अनेक जतन कर कृष्ण ना त्रापय पेख अनेक अगन नहीं बुझय कोट उपाव दरगाह नहीं सिझय छूट सनाही उब पयाल मोह व्यापह माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज।

निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन्तु साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

दयालु। करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्द नाहे कत करै छपाया। बाहर

राष्ट्रपदी मानो की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहरना तृष्णा लाग आए मारे राख को आप मानुख कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म बूझ।

आप अष्टपदी जब अकार एहुकाश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछते।

माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्व कला आप है परवीन, तह वेद देव कहाँ को चीन। जब अपने आप उरत हारे, तो शगन अपशगन कहाँ विचारे। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हूँ आप। जह अशल अशेद अपेद समाया, ऊहां किस है व्याप्त।

महो विशास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन।

करे हर वस्त संभाले, नाम निधान हर बन जिये, हीरे पर वाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे, से मूड़ बेताले, से उजड़ परम पवाई है, ज्यो चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया।

पौड़ी सब निदान कर जिस दै हर करे सो होवै। जब जब जीव है संत जन पापा मल धोवै, चरण कमल हृदय वसै संकट सब खो।

ਨਾਹੀ ਕਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਰਸ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਰਾ ਰਹਾਉ।

यह अबोल तह मन न रहा वा बोल अबोल मद है सोई जस ओहो है तस लख न कोई अलह लहो तो क्या कहो कहो ताको उपकार बटक बीज महराव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार अलह लहंता अलह लहंता भेद शय कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन भेदे पायो अभंग अशेद।

ढूंढ जब आवा। जेह गढ़ गढ़यो सो गढ़ मह पावा, जेह गढ़ गढ़यो सो गढ़ मह पावा। नाना रण रूतो नर ने ही करे, ना निवै ना फुन संचरै।

अकुल निरंजन एकै पहाए तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावे साध संगत उपजै विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास चौथे चंचल मन कौ गहो काम क्रोध की काम

पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल सामान चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मुरार सत संतोख का तरहो ध्यान कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान।

तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक अनंत करहे हर पूजा।

देख बहु करै, दुख बिखिया सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुविधा छोड़ नाम निस्तरै, सिफत सलाहन सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोविंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन

संतापी दुर्मत त्याग लाहा किशले वहो जो उपजाय सो अलाख अपे वहो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

रहाओ। हर हर हार कंठ ले पहरे, दामोदर दंत ले, कर कर करता कंगन पहरे, इन विद चित तहे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे, परमेश्वर पट ले, तीरज धड़ी बंधावे कामण, श्री रंग सुरमा देई।

चौथा गुण गावां गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आख बखाणी जब जब नाम मन भया आनंदा सत सत सत गुर नाम दृढ़ाया सत सत सत गुर नाम दृढ़ाया।

जीवत दिसै तिस सर पर मरना मुआ होवे तिस निहचल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे हर हर ना।

शगुन अपशगुन तिस को लग है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ पहावे पुन दान जब तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना

परधाना। जप तप कर कर संजम थाकी, हठ निग्रह नहीं पाई है। नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुर बूझ बुझाई है।

अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजाय, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थाता। चरण रहे कर टरक परे, है मुख हो न निकसै बाता। थाके पंच

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग

देखभाल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुर है तन दिया ध्यान मान मन एक मै प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त पय जोत समाय।

गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिरना होत बियोग। मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा। सतर दहन हर नाम कहन अवर कश न उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समरथ।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत् ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितम।

दुख अधिक जन्म मरण पज शरण सतगुर उपर है हर नाम रिज रमण गुरमत निश्चल मन मन मनंग सहज विचारं गुरमत निश्चल मन मन मनंग सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं भय पाए भगत।

उसात अभिमानी परम भूल नजर ना आवनी मन मुख अंध अज्ञानी उपाय कितै ना लभनी कर पेख थके पेखवानी।

कब हू मैल भरे अभिमानी, कब साधु संग धोइए, कोय न मेटै प्रभ का किया, दूसर नाही अलोइए। कहो नानक।

निर्मल मन करण, कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

जन्म गवावहे। एक मूढ़ मुगदना चेतह मूले जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाणा तेरा।